0: आपका कोई जानकार या विक्टोरिया में टीचर बनना चाहता है तो कई प्रकार के टीचिंग कोर्स उपलब्ध हैं। आप स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र हो सकते हैं ताकि आपको हाई स्कूल टीचर बनने में सहायता मिल सके। टीचिंग में करियर बनाएं। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए टीच द फ्यूचर सर्च करें। विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
1: Geelong's up-to-date weather, brought to you by The Heat Shop, Geelong's trusted Daikin specialist dealer, station sponsor.
2: Salam dua namaskar varakkam sastri akal Geelong ke amjo sarja Geelong akhe akho maro chai. You're listening to me RJ Dhru on 94.7 The Pulse. बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन लेकर आज शो में आया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ और बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेट्स हियर द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द शो। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज जॉइन द कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन 0488877947। स्टे ट्यून्ड विद मी।

0: Hi, I'm Mel. Geelong's creative spirit lives on the pulse. Musicians, poets, storytellers and dreamers all find a home here. It's where local talent gets heard, not just streamed. Where ideas are nurtured, not filtered. The Pulse champions originality, celebrates risk takers and gives artists a place to grow. It's not just about airtime, it's about belief. Belief in the power of local voices to inspire, challenge and uplift. That's why The Pulse is the stage Geelong deserves.
1: 94.7 The Pulse.
2: Marine search and rescue units play a vital role, keeping boating safe across Victoria's coastlines and waterways. Crews are fully trained volunteers responding to emergencies at sea, missing people, breakdowns, and medical evacuations. Victoria Marine Search and Rescue Units are now seeking volunteers. You can volunteer in your local community and make a real difference on the water.
3: To volunteer at Torquay, email secretary@torquaymarinerescue.com. Station sponsor.
4: Geelong Art Centre. Geelong Art Centre, which har show ate har kahani ek nava darwaza khol diya. Sangeet, comedy ate dance di is adbhut duniya vich tuhanda swagat hai. Bas andar kadam rakho te kala de ranga vich rang jao. Geelong Art Centre, jithe naviyan duniya mein khuldiyan han. Hor janan layi geelongartcentre.org.au te jao. Victoria Sarkar ate Creative Victoria de sanyog naal.
5: You're listening to 94.7 The Pulse. Want to share your thoughts? Join the conversation by texting us on 0488 877 947. That number again, 0488 877 947.
6: सलाम दुआ नमस्कार वेलकम सत श्री अकाल जिलांग द गेस्ट इज इन द स्टूडियो जिनके साथ हम बात करने वाले थे वी हैव गॉट दीपल फ्रॉम स्पेस अजाइल जिनके साथ आज हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज सोशल मीडिया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज ई कॉमर्स ये एक ऐसा पॉइंट है जो भी ऑस्ट्रेलिया में या हर जगह में कोई भी आप कंट्री में ले लो It's increasing. People are making money out of it. People are selling their products out of it. People are making their brand out of it. Thodi baat karenge unke saath about the show, about the what is social media. Stay tuned with me. Let's welcome Deepal on the stage. Deepal, thank you so much for being with us. Aapke time ke liye humko bahut bahut dil se thank you.
7: Thank you, Dhruv.
6: So first thing is, what is Space Agile and aapki company kya karti hai?
7: So basically, it's more sort of a technology company. Where we also do digital marketing and e-commerce business setup and also IT SaaS products. So it's kind of a software development.
6: What kind of software developments you do? So thoda agar aap detail mein explain karna chahenge apne listeners ke saath ki what are the products you do and what is the thing jo bhi Australia mein sabko guide ho sakte, what can be the helpful to them?
7: So basically, Dhruv, abhi to AI automation is in the trend. So whatever businesses need help with the AI automation, CRM ho gaya, ERP system ho gaya, HRMS system hai, email marketing hai, SMS marketing hai, everything we do automation right now.
6: Ek example dena chahenge aap kisi bhi cheez ka.
7: Yeah, sure. So for example, any mortgage brokers, they need leads through a social media or direct to the customer. तो हम लोग क्या करते हैं एक लीड फॉर्म बनाते हैं लैंडिंग पेज बनाते हैं जहां पे हम एड रन करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू एंड गूगल एड्स के थ्रू सो वी सेट अप द बिजनेस एंड देन एड गोज टू द मार्केटिंग प्लेसेस एंड देन फ्रॉम देयर दे विल गेट द इंक्वायरीज बेस्ड ऑन देयर फॉर्म थ्रू द ईमेल ईमेल में हम ऑटोमेशन डालते हैं लाइक द ऑटो रिप्लाइज एंड दैट ईमेल का पूरा जो डाटा होता है वो सीआरएम में चला जाता है सो दैट इज आल्सो डन थ्रू आर एआई एजेंट एंड देन दैट डाटा विल देन जनरेट अ सेल्स लीड फॉर द सेल्स पीपल वेयर दे कैन कॉन्टेक्ट टू द कस्टमर्स फॉर देयर रेलिवेंट इश्यूज और इंक्वायरीज और एनीथिंग लाइक दैट उसमें भी एआई आता है उसमें हम सेल्स इनबाउंड भी कर सकते हैं तो उसमें भी एआई आता है अंटिल योर लीड इज नॉट क्लोज्ड एंड देन दैट्स हाउ इट वर्क्स
6: जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है दीपल इज गोना बी इन द स्टूडियो विद अस टिल 6 पीएम पूरे शो में अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आई नो बहुत सारे लोगों के दिल में एक क्वेश्चन है कि यू नो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग उसके बारे में भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस सॉन्ग कमिंग फ्रॉम द स्टूडियो स्टे

0: सलाम दुआ नमस्कार वडकम सस्त्रीकाल बात हमारी कंटिन्यू रहेगी विद दीपल फ्रॉम स्पेस एजाइल लेट्स हैव मोर कॉन्वर्सेशन अबाउट दीपल सो व्हाट इज एआई एंड हाउ कैन एआई बी यूजफुल इन द डिजिटल मार्केटिंग और एआई अभी देख रहे बहुत सारे लोग एआई का यूज करते हैं बहुत सारे अलग अलग टूल्स आ गए हैं जो लोग यूज करते हैं हाउ पीपल कैन यूज इट उसका क्या आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे टू ऑल द बिजनेस और ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू अस राइट नाउ
1: So Dhruv, AI is definitely everybody knows artificial intelligence. तो उसका digital marketing में क्या role होता है? Basically we can start from content creation. So content creation is where we create the post, where we create the content, we write the captions, we use the trending words. So this is where AI jumps in. AI does the reporting. एनालिटिक्स करता है कि अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है फॉर एग्जाम्पल द वॉर द ट्रेंडिंग म्यूजिक द कैप्शंस द नेम्स वो सब डिटेक्ट करके एआई विल जनरेट अ स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट क्रिएटिंग एज वेल अभी कैनवा में भी एआई आ गया है कैपकट इज देयर एवरीथिंग इज एआई बेस्ड सो एआई इज लाइक सुपर ईजी टू यूज बट इफ यू डोंट हैव करेक्ट नॉलेज देन You're not able to present it well. So this is just a basic of the start where you use AI for digital marketing. The second automation comes when you are posting your content. For example, being a digital marketing agency, हमारे पास more than 5 or 10 customers होते हैं, clients होते हैं, जिनका हमें post करना होता है within a day. And that is also like not only in one platform, but 5 to 10 platform mein hume post karna hai. So it's really confusing for human to remember all those links, open that and then post it and caption and everything. AI ke bahut sare tool hai, bus sprout hai, trending, trends karke hai. Usme kya karna hai? You just create a profile of the user. Wo uske andar hume link प्लेटफॉर्म में डाल देनी है एंड देन इट विल गिव यू अ कैलेंडर एज वेल वेर यू कैन स्केड्यूल योर पोस्ट एंड इट विल ऑल्सो जनरेट कैप्शंस फॉर यू एंड इट विल पोस्ट दैट बेस्ड ऑन योर स्केड्यूलिंग टाइमिंग्स तो ये सारे एआई टूल्स होते हैं जिससे बहुत ईजी हो जाता है हम लोग के लिए पोस्ट करना एंड क्लाइंट के कॉल्स आना कि अरे पोस्ट हुआ कि नहीं ये हुआ कि नहीं वो हुआ कि नहीं सो देन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन एड सो मेटा एड इज वेयर मेटा एआई इज देयर विच विल predict and analyze report based on your past post and products ke abhi kahan kahan pe hum improvement kar sakte hain based on that it will auto generate those meta ads for you all you need to do is chip in the money for that
0: stay tuned with me for more information that is coming from studio agar aap aur information janna chahte hain make sure you search the page space agar aur bhi information main unke bare mein share karunga in the studio And make sure to listen to 94.7 The Pulse.

0: One last question that is coming from the studio to Miss Dipal Thakkar is, so Mother's Day aa raha hai, what is the ek kya message aap dena chahenge to the listeners of Australia?
1: So Dhruv, being a mother, mujhe aisa lagta hai, jaise maine bola na, ki the day when my daughter was born, तब एक अलग से एक पूरी अलग दुनिया बनती है और जहाँ पे हमारा रोल शुरू होता है एज अ मदर, तब जाके समझ में आता है कि एक्चुअल में माँ का सैक्रिफाइस करते हैं, माँ जैसे हमें रेस करते हैं, उनके लिए जो प्राउड मोमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो मैं अपनी डॉटर में देखती हूँ. एंड जैसे मैंने बोला कि मेरा हर एक एक्शन का रिएक्शन क्या होगा उसके लिए मैं मेरी डॉटर का सोचती हूँ. सो बीइंग अ मदर इज अ ब्लेसिंग फॉर एनीवन ऑन दिस अर्थ.
0: जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, स्टेट

all those listeners are listening to me right now, make sure to subscribe 94.7 The Pulse. हमको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे-अच्छे शोज, अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए हमेशा रेडी रखें. Stay tuned.